एफ ए के दौरशुमार में तकरीबन 180 क्लबों का तذکرہ किया जाता था। तो 2023 के आखिर तक हम देखते हैं दुनिया भर में 325 क्लब एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा बन गए, जहां मालकन के दूसरे क्लबों में भी हिस्से हैं। ये सिर्फ इजाफा नहीं बल्कि जोग्राफी तबकाती तब्दीली भी है। जबकि क्लब की मुल्कियत मकामी दौलतमंद अफराद या फैन क्लबों के हाथ में होती थी, आज हमें 120 मुख्तलिफ ग्रोहों या अफराद पर मुश्तमिल आलमी अशराफिया का सामना है। अगर चीन में से 31% क्लब यूरोप में हैं, लेकिन यही रुझान तमाम 6 फीफा कन्फेडरेशन में नमाया हुआ है। खासतौर पर चीनी सरमाकारों के बैन मुल्कामों से 10 पर्दार होने की जगह शुमाली अमरीका की प्राइवेट एक्विटी और वेंचर कैपिटल फर्मों के आने के बाद फुटबॉल मालियती सनत के लिए काबिल तशरी असासा सिनफ बन गया है। तो सरमाकारी का ये माहौल किस सतह तक पहुंचा है, तादोशुमार हैरान कन है। फुटबॉल की दुनिया में इंजमाम खरीद की मालियत 2019 में महज $40 मिलियन थी, तो ये रकम 2022 में $5 बिलियन तक पहुंच गई और 2023 के आखिर तक इसके $10 बिलियन से तजावज करने की तवक्को थी। यही जोग्राफी मईशत का अहम मरकज है। इस नए दौर में हमारे सामने सबसे ज्यादा ताकतवर अदाकारों में से एक खलीजी सरमाया है। जैसा कि हम इस प्रोग्राम में अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि वो रियासत जो अपने कुदरती वसाइल की दौलत को आलमी रसूख के दायरे में तब्दील करना चाहती है, इन सब मैदानों यानी फुटबॉल ग्राउंडों को सफारती गढ़ के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। इस मैदान का सबसे बड़ा खिलाड़ी सिटी फुटबॉल ग्रुप है। जिम्मेदार मारा की तरफ से फंड और कंट्रोल किया जाता है। 12 क्लबों के पोर्टफोलियो के मालिक हैं। इस मॉडल की कामयाबी न सिर्फ माली बल्कि खेलों में भी साबित हुई है। 2022 में ग्रुप के जेली इदारे मैनचेस्टर सिटी, मेलबोर्न सिटी, मुंबई सिटी, योकोहामा मारिनोस ने अपने अपनी लीग में चैंपियन का एजाज हासिल किया। तमाम इस सिक्के का एक तारीख पहलू भी है। सऊदी अरबियन पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF कैसल यूनाइटेड को खरीद कर प्रीमियर लीग में बड़े जोरों शोर से मकाम बनाया और सिर्फ 2 सालों में इसने अपने मुल्क के 4 सबसे बड़े क्लबों को खरीदा, जिससे ग्रुप दुनिया का दूसरा बड़ा सबसे बड़ा MCO ढांचा बन गया। कतर के पेरिस सेंट जर्मेन क्लब्स में 6 क्लबों का नेटवर्क, बहरीन के सरमाकार ग्रुप भी इसी दौड़ में शामिल है। जैसा कि हमने डोमिनेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तनाजे में जिक्र किया है, ये एक किस्म की हाकमियत की हामिल फुटबॉल सरमाकारी है। रियासत ने अब न सिर्फ तवानाई के शोबे बल्कि आल मकबूज सकाफत की सबसे बड़ी शरियान पर अपना कंट्रोल कायम करने की तगो दो में है। कंट्रोल में लेने की ये तमन्ना महज मशरक वस्ती तक महदूद नहीं, हम यूरोप के अंदर भी दिलचस्प जोग्राफी माशी चालों का मुशाहदा कर रहे हैं। हुकूमत हंगरी ने वज़ीर आज़म विक्टर ओरबान के मातहत क्रोएशिया से यूक्रेन तक, सर्बिया से रोमानिया तक हंगरी बोलने वाले इलाकों में क्लबों, स्टेडियमों, अकेडमियों में 55 मिलियन से ज्यादा की सरमाकारी की। ये खेल को इलाके सरकारी के लिए मोहरे के तौर पर इस्तेमाल की जाने की एक ठोस मिसाल है, लेकिन बड़े पैमाने पर तरक्की संगीन खतरात भी लाती है। लेजर फेयर के तौर पर तरीकाकार पर काम करती थी, हम इस बेकाबू तरक्की के नतज का सामना कर रही हैं। UEFA ने खबरदार किया है कि सरमाकारी का ये मॉडल क्लब टूर्नामेंट्स की सालमी इंसाफ के लिए खतरा बन सकता है। एक मुल्कियत के हामिल 2 क्लबों का मध्य मुकाबल आने का खतरा खेल की बुनियाद रकाबत के जज्बात के मुनाफी है। ज्यादा अहम बात यह है कि माली इंतशार का खतरा है। अगर एक बड़े MCO ग्रुप का मालिक मालियती बहरान का शिकार हो जाता है, तो एक सिलसिला रद्दअमल पैदा कर सकता है, जिससे दर्जनों क्लब और हजारों फुटबॉलर्स मुतासर हो सकते हैं। अहम बात यह है कि माली इंतशार का खतरा है। अगर एक बड़े MCO ग्रुप का मालिक मालियती बहरान का शिकार बन जाता है, तो एक सिलसिला रद्दअमल पैदा कर सकता है, जिससे दर्जनों क्लब हजारों फुटबॉलर मुतासर हो सकते हैं। UEFA के अदाद शुमार के मुताबिक नेटवर्क के अंदर 180 क्लबों में 6500 पेशेवर खिलाड़ी हैं, जबकि मौजूदा तहकीक बताती है ये तादाद 12000 के करीब पहुंच रही है। एक ग्रुप के खात्मे का मतलब है कि मुंतकली के बगैर अदा किए गए कर्जे और हजारों बेरोजगार खिलाड़ी।
तो ये सरमाकार कितने काबिल इतमाद हैं, इन ताकत के मैार पर भी सवाल उठाना पड़ता है। माजी में बड़े पैमाने पर मैच फिक्सिंग स्कैंडल्स एमसीओ के ढांचे से सामने आए जो एरिक माओ जैसी शख्सियत ने कायम किए थे। नोआ ग्रुप की लटविया ब्रांच मैच फिक्सिंग की सजाओं से दर्ज उठी, जबकि जर्मन क्लब के